0: ये पुमी के माथों ने योंगु मारे अम्जी लान्या किराले शो तेंजो
1: ये
0: पुसी के
1: नाना
0: ये मी दा जे बु लोजो ये पु रिम छि ने रि अम्जी लान्या किराले शो तेंजो अम्जी ला
2: जे मा दा अजा जे ये
1: अजा
0: नी रे माथों ने योंगु मारे
2: अम्जी ला अजा से ने दा वो जे मा दा जे
1: जे मी थामा बे ओ माजे तंदो ने जे गु ला जे याबुजे
0: 미신다미
1: 水晶也没好吃的，也说定做水晶给空明嘛谁，水晶给苦谁？
0: 水晶没个痛苦买不着。